0: from Vandalux, Bright Lights. Your Love is My Favorite Band, The Vaccines. And Lady Mercy with The Fox and the Moon. He's an Indian rapper, singer-songwriter, business person, and music and movie producer.
1: I'm Simon.
2: This is Milo.
3: I'm Milo.
1: Welcome
2: to Prozac's
1: Hot Show.
2: Enjoy.
4: एक कोने में था बैठा जब मुझे वो दिखी थी वो सबसे अलग थी वो सबसे हंसी आंखें मेरी फिर उसकी आंखों से जम ली एक बारी दो बारी फिर निकली हंसी एक हाथ हवा विच दूजे च गिलास ते मेनू नहीं पता सी गिलास च की बट हौली हौली लक नु घुमा के नचदे लगे सो सेक्सी।